0: पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: सीन के पहले टारगेट सेट कर जब उसे अचीव कर लेते हैं ना हम, तो एक अलग ही किस्म का सुकून, एक अलग किस्म की खुशी मिलती है हमें। पर असली मजा वो नहीं है, वो नशा, एक अलग सा मजा उस सफर में है, उस सफर में जहां हम छोटी छोटी जंग को फतेह करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वो सफर अक्सर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी बहुत याद आता है। आई एम श्योर आप भी इस सफर को एंजॉय कर रहे होंगे, सफर गीतों और बातों का, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदातला।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: बाकी जो मर्जी हुंदा हो जावे वीरे पर गाल नहीं कढ़नी।
0: हम मानते नहीं, ढूंढते नहीं, पर हम में से हर एक में लीड करने की, इंस्पायर करने की क्षमता है। चले जिसे भी आप अपना आइडियल मानते हो, वैसे मैं अपनी बात करूं तो आई विश आई कुड बी मे बी अ बिट लाइक डॉक्टर किरण बेदी, द वर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। मन चाहता है वैसा बनना, पर कहीं ना कहीं डर भी लगता है। फिर सोचती हूँ कि वो किसी और प्लैनेट से थोड़े ना आई है, हम में से ही तो एक है। जब इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी के बारे में स्ट्रांगली

0: रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी है
1: क्या। You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: गुस्सा हमेशा से हमारा बहुत बड़ा दुश्मन रहा है और कई बार ये इतना बड़ा नुकसान कर जाता है हमारा कि भरपाई नहीं हो पाती। कहते हैं एक बार एक आदमी ने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा किया और उन्हें जोड़ कर अपनी ड्रीम कार खरीदी। उस कार को बाय करना वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम। घर लेकर आए, चाय पी कर घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं। वाला अभी बहुत लंबी बात है, पहले एंजॉय करते हैं अगला ट्रैक एंड देन वील कंटिन्यू।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: चाय पीकर घर से बाहर निकले तो देखते हैं कि उस इंसान के 3 साल के बेटे के हाथ में हथौड़ा आ चुका है और कार के राइट साइड पर बहुत से डेंट थे. He was hitting the car with a hammer. इस सारी सिचुएशन को देखकर उस आदमी को इतना गुस्सा आया दैट इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. उसी हथौड़े के साथ बच्चे के हाथ पर दे मारा. कुछ देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो झट से हॉस्पिटल भागे. चोट ज्यादा थी इसलिए अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की एक फिंगर एम्प्यूटेट करनी पड़ी.

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। जो अभी हमने बात की उस इंसान के बारे में जिसने गुस्से में आकर अपने बच्चे की एक फिंगर गवा दी, टाइम निकाल पाए तो कभी गौर जरूर करें इस बारे में। और अगर इस इंसिडेंट के बारे में दिमाग के साथ साथ आप दिल से भी सोचेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप फिर कभी भी पेशेंस लूज नहीं करेंगे, खासकर अपने अपनों के साथ, क्योंकि टूटी कार ठीक हो सकती है, महंगी चीजें जो डैमेज हो गई है दोबारा खरीदी जा सकती है, बट ब्रोकन बोन्स एंड हर्ट फीलिंग्स ऑफन कांट। Well, the moral being that think before you act, be very patient, be very understanding and very, very loving.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: I've met many such determined souls in my physical deformity ya koi bhi physical problem hone ke bawajood hausla beinteha tha. जो रोज सुबह उठते थे और हौसले और ताकत के सर पर एक जंग लड़ते थे और सिर्फ लड़ते नहीं थे जीतते भी थे. इसी वजह से शायद हर सुबह उनके लिए एक नया इम्तिहान होता था. हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं.

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: जी जनाब, चाहे घड़ी की सुइयां भागती जा रही हैं और मेरे जाने का टाइम नजदीक आता जा रहा है, पर एक बात कहूँ, तुम मुझे अलविदा ना कहना, क्योंकि तुमसे नाता है यू वफाओं का, जैसे खुशबू से है हवाओं का, जैसे होंठों से दुआओं का, जैसे रिश्ता हो धूप छाँव का। अजीब सा सुकून है, पाकीजगी है इस रिश्ते में, इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम मुझे अलविदा ना कहना।

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: ये जिंदगी भी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पे एक नया सवाल देती है। ढूंढते रहते हैं हम जवाब जिंदगी भर, और जवाब जब मिल जाए तो सवाल बदल देती है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: सिम्टम्स को देखकर जैसे पता लग जाता है ना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल वैसा ही है मोहब्बत के साथ भी। वही तकरार लफ्जों की, वही गुमनाम सी कसक, वही हर बात पर रंजिश, वही हर बात पर लड़ना, वही लिखना हमारे नाम को बेरहम मौजों पर, हमें पर्दे से छुपकर देखना और मुस्कुरा देना, वही मुस्कान धीमी सी, वही कुछ बोलती आंखें, वही साये से घबराना, सभी आसार कहते हैं कि हाँ उसे मुझसे मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत।